तुम पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आखे वखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ, त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

चावहो सुखी बस मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौ आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा।

हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जाबे आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जीते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे

हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जीरज से तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होय ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण।

दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो

मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरै, मोहे चात्रिक तुम बूंद, त्रिपताओ मुख परै।

हैं, मिल हमारी होए गति, चीत चित वाओ मेट अंधारी, ज्यो आस चकवी दिन चरै, नानक पयंपै प्रिय संग मिली, मछली नीर न विसरै, सतगुर पूरा पातशाह, त्रिभवन जग तिस दावन जारा, सतगुर पूरा पातशाह, त्रिभवन जग तिस दावन जारा, रतन पदार्थ बेसुमार, पाव भगत दे परे भंडारा।

लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान तू ते ज्योत स्वरूप है तू ते परम प्रकाश है तू ते परम आनंद है तू ते परम खेड़ है देख दे आसी सिपियां संख लहरा सागर दे कंडे देने उपरी सतह देने गहराई दे मोती पैने उपर नहीं मोती मिलते किनारे ते नहीं मोती मिलते तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे चे तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोज दिया उसनु नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निद पाई जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस्त हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है ओ दो जहाना दी बादशाहत नु ठोकर मार देंदा है माला माल हो जांदा है महाराजा बन जांदा है महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है त्रिपत हो जांदा है। इसे नु ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है जमीन नालों तीन हिस्से सागर ज्यादा है पानी ज्यादा है धरती घट है इतना वड्डा पसरिया होया फैलिया होया ए सागर और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरिया होया पानी समुंद सहा सुल्तान इस दे घर दौलत कितनी होवे सोना चांदी कितना होवे इस दे घर दे च हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन गिरहा सेती माल धन जमीन दे उते जितने पहाड़ ने इतना इस दे घर दे च सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं जो समाधि लीन हो गई है इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है कीड़ी गिनती मिनती च नहीं आउंदी कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी जिस बंदे दी कोई जात नहीं पात नहीं कुल नहीं जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं समाजिक शक्ति नहीं आर्थिक ताकत नहीं कुछ भी नहीं हर पासे पछड़े होया है और किसी दी निगाह भी उसते नहीं पैंदी बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले पर सतगुरु कहंदे जे उसदे हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए ओ किधरे अंतर्मुखी हो जाए तो इतना वड्डा बादशाह भी उसदे पैरां दी खाक नहीं क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है ओनू महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर ते कुछ भी नहीं है खाली है। तो जैसे कोई मन दे प्रवेश करता है गीत मिलते ने संगीत मिलता है दर्शन मिलता है फिलसफा मिलता है पर यह सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है होर अगे जाना है सत्संग दा यही लाभ है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कोल बैठ के

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो।

शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरन तो नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की धन। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश ने किते ने प्रेरणा दिती है वो मैं आपनु सरवण कराने की निमाणी कोशिश कर रहा हूं। मनुख समाजिक प्राणी है, इस संबंधा तो बिना नहीं जी सकता, इनू संबंध बनाने पैंदे। क्यों? संबंधा तो बिना जी नहीं सकता। कोई नहीं संबंधी तो एक कल्पना दे संबंध बना लेंदा, ख्यालां दे संबंध बना लेंदा, ख्यालां दे संबंधी बना लेंदा, फिर उन्हां नाल रहिंदा। कारण मनुख एक ऐसा प्राणी है जिन्हें दूजा तीजा चौथा पंजवां चाहिए। इदा अपने आप दे नाल रहना कठिन है। और अपने आप दे नाल रहिंदा है या परमात्मा या कोई परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई आत्मा सन होते अपने आप नाल रहिंदा। बाकियां नूं दूजियां नाल संबंध जोड़ के बना के जीवना पैंदा। संबंधी चाहिए। आम जो असी संबंधी बनते हैं, मैं उसकी रूपरेखा थोड़े सामने नहीं रख रहा। वो संबंधी उन्हां दियां प्रणालियां ते तिन ने, नानके दादके सौरे। अगर कोई आखे फलाना मेरा संबंधी है तो दादक्यां दे चों होवेगा, दादक्यां दे चों नहीं ते नानक्यां चों होवेगा, जे नानक्यां दे चों नहीं है ते सौरियां दे चों होवेगा। संबंधियां दियां संबंधां दियां ये प्रणालियां तिन ने, चौथी प्रणाली नहीं है। संबंधी सारे दे सारे इन्हां ही तीन प्रणालियां च आ जांदे ने, दादके नानके सौरे। पर जरूरी नहीं इन्हां च वाकई कोई संबंधी होवे। दो बिरा ने इक्को शहर विच रहिंदे ने, बोलदे भी ने, मुकदमेबाजी चलती है। की संबंध है? प्यो पुत्र विच बोलचाल भी नहीं है। ये कहन मात्र सारे संबंध ने, वास्तविक जो संबंध ने, मैं उन्हां दी थोड़ी जिहा रूपरेखा थोड़े सामने पेश करन लगा। वो संबंधा दियां प्रणालियां विचारवाना ने चार मनिया ने, समाज दे ते प्रणालियां तिन ने, दादके नानके सवरे। भाई साहब भाई गुरदास जी ते इन्हां तिन्ना ही संबंधा दियां प्रणालियां ने सिखी तो कुर्बान करदे ने, निछावर करदे ने। भाई साहब का सवैया भी सुना दें, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। ये दादक्या की प्रणाली, पिता फिर पिता का पिता दादा, फिर उसका पिता पर दादा, फिर भरा और सारे संबंधी। नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा
सज्जन ने कुटुंब सुख बांधव नाम राखा, पर दादा ते पुत्र पोतरा ते सब दादकियां दी प्रणाली च आ जाते। नहीं नन सार नानकियां का रिश्ता मां तो चलता है, दादकियां का पिता तो चलता है। नहीं नन सार माता पर माता ब्रज माता, मामी मामू मासी मौसा बिबद बिख्याता है। तीसरा रिश्ता सौरियां का पत्नी करके या पत्नी का पति करके चलता है। नहीं ससुराल सास ससुर सारो हो सारी, नहीं ब्रिटिशर जाचक ओ ना दाता है। असन बसन धन धाम काहू नैना देखो, जैसे गुरसिख साध संगत हो नाता है। भाई साहब कहें ने सिखी के नाते तो दाद के नानके सौरे सारे कुर्बान करवा। जो सिख का सिख नाल रिश्ता, जो सिख का गुरु नाल रिश्ता है, इस तरह का होर कोई रिश्ता नहीं। खैर हुण दे रिश्तियां दियां एक प्रणालियां तीन ने, लेकिन विचारवाना ने संबंधा दियां जो चार प्रणालियां बयान कीतियां ने, मैं थोड़े सामने इन्हां नूं खोलण दा यतन कर रहा, क्योंकि मनुख ऐसा प्राणी है। मैं फिर दोहरावां, संबंधा तो बिना नहीं जी सकता, संबंधी चाहिए, दूजा तीजा चौथा पंजवां चाहिए। कह दिता जांदा कल्ला ते रब भी दावे, पर कौन दसे रब ते है ही कल्ला, उन्हें किसे संबंधा की लोड़ नहीं है। और जब कोई जपद्या जपद्या स्वयं परमात्मा का रूप हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी, किसे संबंध की लोड़ नहीं। हम मनुख को संबंधा में जीवना पैदा, संबंधी चाहिए। विचारवाना ने दार्शनिक लोगों ने धार्मिक ज्ञानियों ने कि जो चार प्रणालियां मनियां ने, एक सब तो नीवी एक सब तो शिखर दी, दो विचकार दियां सब तो नीवी। अपने लोभ को केनो में, इस नाल इस वास्ते संबंध जोड़े है, वक्त सिर कम आ जाता है, लोड़ां दी पूर्ति कर देना है। इस करके चंगा लगता है, उंज इस नाल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वक्त पैण पे कम आ जाता है, कम सार देता है, लोड़ां दी पूर्ति कर देता है। इस वास्ते प्यारा लगता है, चंगा लगता है, उंज इस नाल कोई संबंध नहीं। ये संबंध पशु भी जोड़ लेंदे ने, पठे पाई जाओ गऊ पिछे भजी आउंदी, टुकर पाई जाओ कुत्ते पिछे आई जाते। ये संबंध पशु भी जोड़ लेंगे। अपने लोभ को कीनो में, ये संबंध मनुख मनुखा नाल जोड़ सकता है, ये संबंध मनुख परमात्मा नाल जोड़ सकता। उंज ते परमात्मा तेरे नाल कोई मतलब नहीं सी, पर तू कुछ इच्छावां दी पूर्ति कर देना है, तो वक्त सिर कम आ जाना है। तेरे अगों अरदास ते जोगड़ी कर देना, वक्त सिर कम आ जाना है, उंज तेरे नाल कोई मतलब नहीं। अपने लोभ को कीनो में, ये पहला संबंध है लोभ दा लैण दा, वक्त सिर कम आ जाता है, लोड़ां दी पूर्ति कर देता है, किसी मुश्किल दे वक्त कम आ जाता है, जरूरत दे समय कम आ जाता है। उंज इस नाल कोई मतलब नहीं। मैं फिर अर्ज करा, ये संबंध मनुख
मनुख नाल जोड़ सकता है, परमात्मा नाल जोड़ सकता है। कोई मुश्किल आ गई है, कोई विपता आई है, चलो गुरुद्वारे चलिए अरदास करा दिए, उन कोई मतलब नहीं है रो जाना। नितनेम करन दा, जप तप करन दा, कथा कीर्तन सुन दा कोई मतलब नहीं। गुरु कुछ कम पै गया, तू कम आ सकदा, चलो आउंदे हां तेरे अगों अरदास करदे। अपने लोभ को कीनो में कुछ लेना है, लोभ लेना है, इस करके इन्हों मित्र बनाया है, उनसे कोई मतलब नहीं। मैं फिर दोहरावा, यह रिश्ता पशु भी जोड़न दे समर्थ हो जाते हैं। टुकर पाई जाओ कुत्ता पिछे आई जाता, पट्ठे पाई जाओ पशु पिछे आई जाता।

जो पशु भी जोड़ लेते हैं। इंसानियत मानवता पता है कदों जन्म लेंदी है, उदों जन्म लेंदी है, संबंध जोड़े है लोभ करके नहीं, लैण करके नहीं, तो उंज ही प्यारा लगता है, उंज ही चंगा लगता है, तेरा होना ही काफी है, तू होमे यही काफी है, तेरा होना ही चंगा लगता है, तेरे बोल ही चंगे लगते हैं, तेरी सूरत ही चंगी लगती है, तेरा कोल होना ही चंगा लगता है, तेरे कोल कुछ लेना नहीं। इनू कहने प्रेम, प्रेम पशु नो मनुख बनाता है, लोग मनुख नो पशु बना देता है। इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे खुलासा, ये दो शब्द मैं फिर दोहराऊंगा, प्रेम पशु नो भी मनुख बना देता है। और कई पशु मनुख जैसे देखे गए कहते ने, महात्मा बुद्ध जंगल में तपस्या कर रहे सन, एक हाथी उन्हां दा करमंडल चुक के निरंजना नदी चो पानी भर लैंदा सी, अगों रखदा सी, उच्चे उच्चे दरख्तां तो अंब तोड़ लैंदा सी, केले तोड़ लैंदा सी, जंगल भरे पए सन, अगों रख देंदा सी। और जब रात पै जाए तो चारों पासे घूम के पहरा देंदा सी, कोई जंगली जानवर इन्हां ते हमला न कर। की रिश्ता है महात्मा बुद्ध नाल, उंज चंगा लगदा बैठा है, किसे मस्तिच किसे सरूर विच चंगा लगदा। ये हाथी नूं भी चंगा लगे, शायद आपनूं पता होवे सारा बौद्ध समाज हाथी की पूजा करता है, जैसे हिंदू समाज गऊ की पूजा करता है। कुछ पशु ऐसे हैं जिन्हां दे अंदर मानव होण की संभावना छुपी हुई है। बहुत सारे मनुख ऐसे ने बिल्कुल मनुख नहीं ने, पशु ही ने, पशु संभावना की पशु की छुपी हुई है, नहीं पशु करतूत तो पशु की मानस जा लोक पचारा करे दिन रात। एक हाथी का जिक्र धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी बार बार करते हैं, जब ही शरण गही कृपा निध गज गरा ते छूटा, महिमा नाम कहा लो वरनो राम कहत बंधन ते टूटा। तो खैर मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध इस हाथी नो उंज ही चंगा लग रहा है, लेना की सी उस भिक्षु कोल की लेना सी, जिदे कोल कुछ भी नहीं सी, सिर्फ तन दे ते इक कपड़ा सी, उदे कोल ते कुछ भी नहीं सी, हाथी ने उदे कोल की लेना। पर महात्मा बुद्ध दा होना चंगा लग रहा है, चंगा लग रहा है। प्रेम इन्हें हाथी नो मनुख बना देता है, किधरे सप भी मनुख बन जाता है, देखे है सप ने ये मुखड़ा जो सारी दुनिया च छां वंडदा है, शांति वंडदा है, प्रेम वंडदा है, सुख वंडदा है, इहदे मुखड़े ते धुप है, इस पनीर छप ने छां कर दिती गुरु नानक ते। देख के राय बुलार हैरान होया से, की लेना है गुरु नानक कोले सपने, की मंग सी उसकी, नहीं गुरु नानक दा होना ही चंगा लगे, सतगुरु दा होना ही चंगा लगता पे, प्रभावित पे कर ला, तेरा होना ही काफी है, तो उंज ही चंगा लगता है। प्रेम कोई मंग नहीं, कोई लोड़ नहीं। प्रेम पशु नो मनुख बना देंदा है, लोभ मनुख नो भी पशु बना देंदा है, लोभी मनुख भरा नो भी धोखा देवेगा, मां बाप नो भी धोखा देवेगा, पत्नी नो भी धोखा देवेगा, बच्चियां नो भी धोखा देवेगा, फिर लोभी मनुख ते गुरु

0: Okay. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: और दसवें पातशाह का हुक्म है कि अगे आवत सिंह जो पावे वाहे गुरु जी की फतेह बुलावे। फतेह बुलाउण नाल दो बार वाहे गुरु गुरमंत्र का सिमरन हुंदा है। और साध संगत जिहड़ी रसना नाल आपां वाहे गुरु कहने आ, वाहे गुरु कहण नाल रसना पवित्र हुंदी है। यह बेनती मैं थोड़े दिन पहला दरबार साहब तो भी कही, पानी नाल हाथ धोवोंगे हाथ सुचे हो जांदे ने, पानी नाल पैर धोवोंगे पैर सुचे हो जांदे ने। किसी ने प्रसाद वरताउणा होवे उहनूं कहिंदे भाई हाथ धो के कोई सेवादार आओ प्रसाद वरताउणा है। अच्छा, वह हाथ धो के आउंदे ने, कड़ा प्रसाद वरताउण लग्गिआं हाथ नाल प्रसाद लैके एक नूं दित्ता, दो नूं, तिन्नां नूं, चौं नूं, दसां नूं, वीहां नूं, पंजावां नूं। वार वार कड़ा प्रसाद हाथ नाल चुक के वरताउंदे ने, कदे किसी ने कहा नहीं भी तेरे हाथ जूठे हो गए, क्योंकि उन्हें हाथ धो के प्रसाद वरताया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बहण है, कोई पैर धो के आउंदा है उहनूं महाराज जी की ताबिया बिठाई दे, भाई तू पैर धोते ने पैर सुचे हो गए। पर साध संगत आ जीभ जिहदे नाल आपां बोल रहे हां, इह जीभा किस तरां दा इंदरा है जिहड़ा किसे वी कीमत ते सुचा नहीं हुंदा। जे कोई बंदा कहे ना कि मैं तां ब्रश कीता होया जी, मैं बाहरों पानी दा कुरला करके आया, मेरी जीभा हुण सुची हो गई है, पर जीभ जिहड़ी चीज़ नाल तुसीं लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जांदा, क्योंकि जीभ सुची नहीं है। हाथ धो के किसी चीज नूं लाउंदे हो हाथ सुचे ने, वह वस्तु जूठी नहीं होएगी। पर जीव तुसीं बाहर पानी दा कुरला करके आ जाओ, ब्रश करके आओ, फिर बंदा कहे जी मेरी जीव सुची है, जिहड़ी चीज नूं जीव लाओगे वह पदार्थ जूठा हो जांदा है। इहदा मतलब जीभा जिहड़ी है वह सुची नहीं हो सकती। पर पातशाह दी बाणी ने कहा भाई जीव भी सुची हो जांदी है, रसना भी सुची हो जांदी है। महाराज कहदे नाल कहिंदे नाम जपत गोबिंद का सुची पई रसना। भाई ए सुची पई रसना कादे नाल? नाम जपत गोबिंद का। जे कोई रसना नाल जपे सत नाम श्री वाहिगुरु ओदी रसना सुची हो जांदी। इसलिए दो बार वाहिगुरु गुरमंत्र आउंदा वाहिगुरु दे विच जदों आपां फतेह गजाउंदे, भाई ये रसना भी पवित्र हो जाती है। बाहरों हाथ पैर धो के अपना गुरु दरबार में आए हाँ, हुण रसना पवित्र करने लिए कहना पैंदा, एक बार फिर रसना पवित्र करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु कहिंदिआं मुख पवित्र हो जाए, वाहिगुरु कहिंदिआं श्वासां दा भला। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जीआं दा आपां पुरब मना रहे हां, शहीदी दिहाड़ा। मैं तुहानूं गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दा एक सलोक लैके कथा आरंभ करनी है, ध्यान नाल सुने। दुनिया विच जिन्ने भी मनुख ने हर बंदे नूं अपनी समझ उत्ते अकल उत्ते बड़ा माण है। जिहनूं मर्जी पुछ लो कहिंदा मैनूं सारा कोई पता है, मैनूं बहुत अकल है। जिहड़े बच्चियां नूं मां प्यो उंगली पकड़ के तुरना सिखाउंदे ने, मां गोदी विच बिठा के बोलना सिखाउंदी है, ओहीओ बच्चा जदों 15-18 साल दा हो जांदा वह मां प्यो नूं कहण लग जांदा तुहानूं नहीं पता मैनूं पता है सब। जदों अकल दा दौर शुरू हुंदा है हर बंदा कहिंदा मैनूं अकल

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

मामूली नहीं हो सकता। अदकि इस तरह कीता ते रावण ने जिहड़ी आखरी गल कीती लक्ष्मण, मनुख की जिंदगी च कल कतई नहीं आउंदा, जो करना अज कर, जो जरूरी काम होवे कदी मलतवी ना करी, पोस्टपोन ना करी, कल ते ना छुट्टी, जो गैर जरूरी काम होवे मलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भूल के भी मलतवी ना करें, जो पुन होवे उनु कदी मलतवी ना करें, जो पाप होवे उनु कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी का वाक जिन्हों का पुरब मना रहे पातशाह कहते, नै बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग। जब कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे साहब कहते बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों? देरी करेगा वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तू वो नहीं कर सकेगा। बिलंब पापंग, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है देरी करी ताकि वह कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईया आलक करे बुरियाई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया बंदा तत् छिन करता है, चंगा संकल्प पैदा होंदा सोचता कल सोचांगे परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइया तो बचता जा रहा है, क्योंकि चंगियाइया नूं पोषण करता है। चंगियाइया आलक करे बुरियाई होवे सेर, ए महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहिंदे ने, रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे, विभीषण तो सारे सीक्रेट सारा राज भरा ने दस दिता विभीषण। और चाणक ऋषि कहिंदे ने, मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकदा है, भरा दे वार तो नहीं बच सकदा। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकदा है दुश्मन दा वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्हें बहुता ज्ञान नहीं है, भरा दा वार खाली नहीं होवे। इस वास्ते आम दुश्मनां दे इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते ने, विभीषण भरा सी रावण का, सारे सीक्रेट दस दिते। इस वास्ते भारत दे छोटी दे इतिहासकार कहिंदे ने, रावण हारे है भरा दी मार तो। तो भारत दे च बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्हों दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख दी फितरत है जो हार जाए वह शैतान आंदा है, जो जित जाए वह भगवान आंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जितदा है वह जो है भगवान है, जो हार जाए वह शैतान है। इस तरह ही होया। इस वास्ते आम बंदे करीबन करीबन कोशिश करते ने, असी जगत दे च जेतू बनीए। तो जेतू तो बन सकते, कोई शक्ति होवे ताकत होवे, मनुख शक्ति तो प्रभावित है। उन्हें मैं अर्ज की सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह दी हुंदी है, एक ते मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर दी शक्ति उन्हूं सत कहिंदे ने, जो बाहर दी शक्ति इन्हूं सता कहिंदे ने। जो अंदर दी शक्ति इन्हूं धर्मनीति कहिंदे ने, जो बाहर दी शक्ति इन्हूं राजनीति कहिंदे ने। बदकिस्मती है, आग काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है। मैं जद पढ़िया सी कि बदर दी लड़ाई विच मुहम्मद साहब जी का अगला दंद भी टुट गया पत्थर दी चोट नाल। जवान उमर होवे ते पत्थर दी चोट और जोर दी इतनी लगे कि दंद टुट जा। कितनी पीड़ा हुई होनी है, कितना दर्द होया होना है। इस फकीर तबीयत इंसान नाल ऐसा क्यों होया? एक पासे सता एक पासे सत है।